0: नीट का पेपर लीक हुआ है तो आंदोलन कौन करेगा? कॉकरोच चेहरा पे, कॉकरोच पहन पहन। नहीं नहीं थोड़ा स्टार्टिंग पेज दिखाने से सर, कॉकरोच को विश्वकन्याएं टेररिस्ट बना रही बता रही हैं। ले चालू हो गया। एगो अभी नीट पेपर लीक हुआ था, एगो बीस करने आई थी पूछते सर नीट पेपर कौन लिखा, हम कहते तो बोल देंगे तो काट देगी। तू न्यूज में नहीं चलाई भाई, बिना हाई लेवल
1: जी जेड़े खान साहब ने अपनी गलबात रख रहे, तुम्हें पता भी काफी लंबा चौड़ी यहां की फैन फॉलोइंग है, काफी ऑनलाइन मिल रहा दुनिया भर च इन्ने कोई होना जरा इना ज्यादा लोगों नु पढ़ाते है ते एजुकेशन दे रहे सी। सो प्रोग्राम नु अगे वधाने एक छोटी जी ब्रेक लैने, ब्रेक तो बाद फिर आपां अपनी गल्लां बात जिहड़ियां जारी रखांगे ते नाल दी नाल साडे नाल गेस्ट भी शामिल होने जा रहे, उन्होंने नाल भी गल्लबात करदे।
2: गर्म जोशी समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नु कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
3: हुण तुसी उन्हां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच भी गल्लबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
2: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
3: कॉल करो 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक-इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
2: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890।
3: छोटे परिवार दी सेहत साडी जिम्मेदारी।
4: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरी मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरम 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
5: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਲੀ ਇਕੱਠੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਤੇ।
6: ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ।
5: जी
6: जी
5: तो कल पता लग रहा है कि आपने बड़ा अच्छे प्रोग्राम की तैयारी की है, कहाँ पे क्या हो रहा थोड़ा सा उसके बारे में हमारे लिसनर्स को भी बताइए जी।
6: हाँ जी।

0: कल होली और बैसाखी दोनों की एक साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग वेस्टविंस पार्क में नॉर्थ ईस्ट में 11-23 और इसमें बहुत सारे सरप्राइजेज हैं लोगों को बच्चों के साथ बच्चों को पेंटिंग का मौका मिलेगा करने का उनको फ्री पॉप्स मिलेंगी चिप्स मिलेंगे स्नैक्स मिलेंगे और साथ में आइसक्रीम भी फ्री होगी So it will be lots of fun for the kids and for adults as well. And these are free for everybody. For everybody. So we welcome everybody to come and enjoy, see some cultural festivals, have dhol. We'll have the dhol as well. So dance a lot and color a lot and have tons of fun.
1: Very good. ये तो बच्चों के लिए तो काफी आपने अच्छी-अच्छी बातें बता दी. बड़ों के लिए भी क्या-क्या होगा वहाँ पे?
0: बड़ों को भी मिलेगा खाने पीने के लिए.
1: अच्छा
0: सब फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ जी और बाकी बड़े डांस डेफिनेटली डांस भी करेंगे और कल्चर एक्टिविटीज भी हैं तो सब कुछ सभी के लिए है मस्ती फुल फुल मस्ती
1: वेरी गुड वेरी गुड तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है लास्ट ईयर भी हुआ था उससे पहले भी हुआ ये प्रोग्राम
0: जी तो जी जी
1: अभी इसको काफी अच्छे तरीके से आप कर रहे हो और खाना पीना गाना बजाना और नाचना सारा
0: नाचना गाना जी जी बिल्कुल रहेगा और बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के सेंटर में है तो एवरीबॉडी प्लीज कम ओवर एंड जॉइन अस एंड लेट्स हैव फन टुगेदर
1: बिल्कुल जी वेस्टर्न पे वहाँ पे सारे इकट्ठे होके और कल ये धूम मचाएगी और इस के अलावा और कोई खास चीज इस प्रोग्राम के बारे में जो हमारे लिसनर्स को पता चलेगी
0: हाँ जी हमारे हमें अपने स्पॉन्सर्स का थैंक यू बोलना है हमारे साथ वाईवाईसी होम केयर है सर्विसेज जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं गौरव है ट्रेवल वर्ल्ड से ब्रिज टेलीकॉम से हैं और गोल्डन हार्मनी केयर है और कृष्णा आईपीटीवी है सबरंग रेडियो है नेशनल टाइम्स टीवी है सिटी ऑफ कैलगरी कॉस्को एंड रेडियो सुरसंगम इन सबकी हेल्प की वजह से हम ये सब इतना अच्छा अरेंजमेंट कर पा रहे हैं और सब प्रोग्राम कर पा रहे हैं सो कम ओवर इन सबका भी हिम्मत बढ़ाए हमारी भी हिम्मत बढ़ाए और सब मिलकर मजा करते हैं उसके लिए आए
1: बिल्कुल बिल्कुल सारे आएंगे और कल का प्रोग्राम जो है सारे ने करीबन तो दस दिन 11 बजे तो लेकर 3 बजे तक के प्रोग्राम होना
0: है
1: प्रोग्राम जो जरूर पहुंच के एंजॉय कर सकते हो रंग कलर भी होंगे वहाँ खेलने के लिए ना
0: कलर परचेज करने के लिए होंगे
1: कलर परचेज करने के लिए होंगे वहाँ पे और उसको परचेज करके तो लोग खेल सकते हैं फिर अपने आप
0: जी जी जी
1: और कोई अपने आप लेके आने की कलर लेके आए कि बाय करने पड़ेंगे उनको ऐसा
0: बाय कर लेने चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक कलर्स हैं तो ऑर्गेनिक ही हम वहाँ पे चाहते हैं कि सारे यूज हो दूसरे ना हो तो उसमें कई बार किसी को स्किन का इश्यू हो जाता है कुछ हो जाता है सो वी हैव अरेंज ऑर्गेनिक कलर्स
1: तो कोई बाहर से अगर ले आएगा तो उसके लिए क्या पता कोई यूज कर सकते हैं कोई बाहर से ला के
0: हम ये चाहते हैं कि कोई ना लाए ऐसे कोई छुपाकर कोई कुछ कर ले तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते बट वी वांट कि ना लाए और वहीं से बाय करके करें तो दैट इज गुड
1: चलो ये अच्छी बात आपने बता दी कई बार कुछ लोगों को एलर्जी होती है और हमारे लोग जो है वो कई बार वो छोटी छोटी चीजों के लिए वो काम कर जाते हैं सो इट्स बेटर कि पहले से आपको पता
0: राइट
1: वहाँ से कलर नहीं लेके आना अगर ऑर्गेनिक यूज करेंगे तो दैट्स बेस्ट और क्योंकि महंगे भी नहीं होंगे और कितने कितने
0: नहीं,
1: का
0: नहीं,
1: कलर
0: नहीं।
1: होता है ना सस्ता ही होता है ना
0: सस्ता ही होगा कुछ ज्यादा महंगा नहीं होगा दैट इज नॉट द इशू हाँ जी पूरा पैकेज मिलेगा
1: तो आप अपने कलर लें और आराम से अच्छे वाले कलर यूज करें और उसी से होली खेलें क्योंकि बाकी सारा कुछ तो फ्री है वहाँ पे
0: जी
1: खाना पीना भी आप लोग दे रहे हो तो बच्चों के लिए बड़ों के लिए
0: जी
1: बड़ा अच्छा मैसेज है तो
0: और हमारे पास वहाँ पर और भी होंगे जैसे बैसाखी का है तो प्लांट्स के बारे में बताने के लिए कि कैलगरी के वेदर में कौन से प्लांट्स होते हैं कब होते हैं क्या होते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास गार्डन सेंटर से भी लोग आ रहे हैं So that will also be there. So if you have any questions, you can feel ask them anytime. They'll have a kiosk there.
1: चलो very good. तो ये अभी plants के बारे में भी जानकारी मिलेगी खाना पीना भी मिलेगा डांस मिलेगा कलर मिलेगा हर एक चीज जो है वो जरूरत की वहाँ पे मिलेगी आपको तो कल वहाँ पे पहुँच के तो आप इंजॉय करें आके ठीक है जी
0: जी जी जी
1: वेदर तो भी अच्छा मिलेगा क्योंकि वेदर भी 24 डिग्री है मैंने अभी
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मौसम अच्छा है, खेलने लायक है, बाहर निकलने का है, इसी बार

0: भी निकले और थोड़ा सा सनशाइन भी लें और थोड़ा सा कलर भी लें, सभी कुछ इकट्ठे से मस्ती में।
1: जी जी बिल्कुल, नहीं बड़ा अच्छा है जी। तो और कोई मैसेज आप बताना चाहेंगे इसके अलावा जी?
0: फिलहाल तो हम बस इनवाइट ही करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप लोग रजिस्टर अगर कर सके तो वो जरूर कर लें। इवेंट ब्राइट के ऊपर भी है हमारा और शो पास के ऊपर भी है, सो दैट गिव्स अस सम आइडिया। और रजिस्ट्रेशन होगा तो इट इज बेटर फॉर एवरीबॉडी।
1: ठीक है जी, वेरी गुड। ये ठीक है, जितनी जल्दी रजिस्टर कर लेंगे तो वो अच्छा होगा, सबको पता चल जाएगा अभी कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है।
0: जी जी जी, इवेंट ब्राइट पर भी है और शो पास के ऊपर भी है।
1: शो पास के ऊपर भी, ठीक है जी। तो
0: जी।
1: नहीं, थैंक यू वेरी मच दादा जी, बड़ा अच्छा मैसेज है। तो होपफुली कल मिलेंगे वहाँ पे जी, सारे लोग हम मिलते।
0: जी जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वाइट कपड़े पहनकर आए और रंग में रंगने के लिए तैयार होकर आए।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है
0: मिलते हैं कल फिर। हाँ जी,
1: थैंक यू
0: ओके जी,
1: ओके बाय। तो ये थे सुनराधा जी, जो कि इंडियन सिन कैलरी दे नाल आईएसी जेड़े है उन्हां दे एसोसिएशन दे रिप्रेजेंटेटिव सीगे। ते कल होली ते विसाखी इकट्ठी मनान जा रहे ने, ते ओदे बारे गलबात जेड़ी है सर ने कर रहे सीगे। सो प्रोग्राम च आपां अग्गे वधदे हां ते प्रोग्राम दी जेड़ी होर गल्लां बातां ने ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਕੋਕਰੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕਦਮ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛਾਪ ਛੱਡਤੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਛੱਡਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਧ ਨੇ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਚ ਕੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਕੇ।
2: ਭਾਰਤ ਮੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਓ ਕਾ ਜਨਮ ਸਾਮਾਨਯ ਤੌਰ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨੋਂ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਸੀਜੇਪੀ ਕਾ ਜਨਮ 16 ਮਈ ਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸੇ ਹੁਆ ਥਾ। युवाओं के मुद्दों को अपना आधार बताने वाली इस पैरोडी पार्टी को अभिजीत दीपकी ने शुरू किया है। अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे दीपके के बनाए इस अकाउंट के लोगो और मीम्स सोशल मीडिया पर तैरने लगे। देखते ही देखते भारत में सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स लाखों में हो गए। इंस्टाग्राम पर तो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स 2 करोड़ के करीब हो गए, जो सत्ताधारी बीजेपी के फॉलोअर्स से 2 गुने हैं। इस बीच सीजेपी के एक्स अकाउंट को भारत में बैन करने के बाद कॉकरोच इज बैक नाम से अकाउंट बनाया गया है। सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा भारत में आम लोगों के बीच में तो शुरू हो ही गई है, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी इस पर अच्छी खासी चर्चा हो रही है। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट द गार्डियन ने 21 मई को कॉकरोच जनता पार्टी पर विस्तार से एक कहानी प्रकाशित की है। गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, कॉकरोच जनता पार्टी को लाखों भारतीय युवा अपनी हताशा और गुस्से को व्यक्त करने के माध्यम के रूप में अपना रहे हैं। कॉकरोच को चुनाव चिन्ह बनाने वाली एक पैरोडी राजनीतिक पार्टी ने हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक हास्य के विरोध के माध्यम में बदलते हुए भारतीय सोशल मीडिया पर विस्फोटक लोकप्रियता हासिल कर ली है। द गार्डियन से सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, ये सब जानबूझकर नहीं हुआ है, इसमें लोगों की दिलचस्पी युवाओं के भीतर बढ़ती हताशा को दिखाती है। असल में युवा बहुत निराश है, उसके पास अपनी बात कहने का कोई माध्यम नहीं है, वो सरकार से बेहद नाराज है। गार्डियन ने लिखा है, दीपके पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी साल 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उभरी थी। दीपके कहते हैं, हमें ये समझना होगा कि 5 साल पहले तक कोई भी मोदी या सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन अब समय बदल रहा है। कतर के प्रसारक अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सीजेपी के अभियान से जुड़ने वालों में कई बड़े राजनीतिक नाम भी शामिल हैं। इनमें पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद शामिल हैं। इसी साल केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए नौकरशाह आशीष जोशी भी उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में पढ़ने के बाद पार्टी में रजिस्ट्रेशन कराया। जोशी ने अल जजीरा से कहा, पिछले एक दशक में देश में बहुत डर का माहौल रहा है, लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। भारत इतना नफरत से भर गया है कि सीजेपी ताजी हवा के झोंके जैसी लगती है। युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर

मरने का एक दूसरा पहलू भी है, कॉकरोच बेहद जुझारू जीव होते हैं, वो हर हाल में जीवित रहते हैं। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि महज 5 दिन पुराना एक समूह जो जेंजी की चिंताओं को आवाज देता है भारत में वायरल हो गया है। रॉयटर्स ने लिखा है, सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ग्राफिक्स और वीडियो पोस्ट किए जाते हैं जिनमें मीडिया की स्वतंत्रता से लेकर संसद और मंत्रिमंडल की आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने जैसे मुद्दों तक पर चर्चा होती है। इसने हाल ही में नीट प्रवेश परीक्षा रद्द किए जाने के मुद्दे को भी उठाया जिसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था और इससे लगभग 23 लाख छात्र प्रभावित हुए। रॉयटर्स ने लिखा, भारत के युवाओं के भीतर बेचैनी इस सप्ताह प्रकाशित डेलॉयट ग्लोबल सर्वे में भी दिखाई दी। सर्वे में कहा गया है कि भारत की जेंजी आबादी यानी 1995 से 2007 के बीच जन्मे युवा रोजगार की कमी और बढ़ती महंगाई से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सर्वे के अनुसार जेंजी में वित्तीय तनाव ज्यादा है और बड़ी संख्या में युवा घर खरीदने की मुश्किलों और आर्थिक असुरक्षा की बात कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, साथ ही बाकी दुनिया की युवा आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं रहता है। देश की 142 करोड़ की आबादी में लगभग 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025 में 15 से 29 साल के लोगों में बेरोजगारी दर 9.9% रही। इसमें शहरी क्षेत्रों में 13.6% और ग्रामीण इलाकों में 8.3% बेरोजगारी दर्ज की गई। यूएई की न्यूज वेबसाइट खलीज टाइम्स ने भी सीजेपी पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। खलीज टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, हालांकि इस आंदोलन का नाम किसी राजनीतिक पार्टी जैसा है लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या भारत अगला नेपाल या बांग्लादेश बनेगा? सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने अकाउंट पर पिन की गई पोस्ट में इसका जवाब नहीं में दिया है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि भारत में राजनीतिक पार्टियों का जन्म सामान्य तौर पर आंदोलनों से होता है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म 16 मई को सोशल मीडिया पर हुआ था। इसका जन्म सटायर या कहें व्यंग्य के तौर पर ऑनलाइन प्रोजेक्ट के रूप में हुआ था और इसके शुरू होने के पीछे की वजह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का एक बयान बताया जा रहा है। एक मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा था, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं, क्या आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं? कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने और पेशे में जगह ना बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत की इस टिप्पणी की बहुत आलोचना हुई। हालांकि इस आलोचना के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया है, लेकिन तब तक कॉकरोच भारत की राजनीतिक बहस में शामिल हो चुका था।

0: ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
4: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student Visa, Visitor Visa, Super